बड़ी बड़ी मुड्डा पारती रामर्त बा रंग प्रंगनेक न जापड़ करत बा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर नंद बधाई तुद कर मान मेहता तेज अपना आप जर सर्व करा भरपूर दिसै जत कता नानक दास संदास तुद आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दया खेल सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वच धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुशक्त काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मुशक्त काल नानक ते मुखी उजले।

प्रबल चंड का साकु भारा खौखट अपहरानत गाए अष्टमाल का सग संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोतम उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदू

तत्र चक्रवर्ती चतार चक्र भूते स्वयं भव सुमं सर्वदा संयुक्ते दुकान प्रणासे दयान स्वरूपे सदांग संगे अभंगां विभूते देख देखो फतेह नसरत वे दरंगा तज आज नाम गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार में तुर दरबारा सच खंड वसे निरंकारा।

जय गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी हाजरिया पड़दे होए कीर्तन दे सत्कार जो संगता वालों बिनत माया हाजर हुए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जीवन मुस्कान दे अरबता सनिया सामन सत्संग पूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

एक पॉइंट हाट सदा बन में रहत ब्रिजत है। एक सांगी कहूं जो किया बरागी बने कब हूं सन्यास फेस बने कहूं बैठ लाए तारी कहूं लोभी लगावे वारी कहूं दंड धारी होय के लोग न भ्राचत है ना जन सो ज्ञान के भी कैसे ब्रह्म लोग पावई पंच बार की तरफ पुकार।

उठे नर नर हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनुक फिर तरंग कोट उपजत आएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहे ते उनको करत भच के ते अच वच बीज अच पछ को करेंगे भज।

तेज जस तेज रेन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहिंगे। कंगवासी के करवत सहत चढ़त के ते दुख को भरत है। गैन में उड़ के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दानव बड़े बसी गस हर चंदन लगाए हर चुवाचार भूज हर बाहन चढ़ाए हर गा हर गोरन मनाए हर मड़ी मट लीप हर आए हर गंधर्व बजाए।

पर मंग न जन मंग न जातंग न मित्रंग न सतरंग न पितरंग न मातंग न कामंग न धामंग न बुतरंग न विभिखंग जोनि स्वरूपं सदा सिद्ध नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहां बास।

जातंग तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहूं गंज के मंज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के।

कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं, कहूँ नेह देहं, कहूँ क्या त्याग गृहं। कहूँ जोग भोगं, कहूँ रोग रागं, कहूँ रोग हरता, कहूँ भोग त्यागं, कहूँ राज साजं, कहूँ राज रीतं, कहूँ पूर्ण प्रज्ञा, कहूँ परम प्रीतं। कहूँ आरबी तोर की पारसी हो, कहूँ पहरवी पस्तवी संस्कृति हो, कहूँ देश भाख्या, कहूँ देव बानी, कहूँ राज विद्या, कहूँ

छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानी अभूत भूत है सदा जानी अजमानी है जानी है देव देव है सदा भेव भेव देव देव है सदा वृद्ध भेव सदैव सर्व साथ सदा वृद्ध सदैव सर्व साथ अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज ना सदा अगंज है अगंज है सदैव सदा वृद्ध अगंज है सदैव सदा वृद्ध अनुरूप रूप स्वरूप है अचिज तेजमानी है सदैव सदा सदा प्रतापनी है सजीवनी है सदा प्रताप मंदानी राग रंग रूप है न रूप राग राग है रूप राग रूप है भूत भ्रम भूत है पदक है भूत भ्रम भूत है न दाद मात जाल है न पाद चिहन दान है देव से सवेद है सदीव विश्व भरण से सवेद है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्व नाद है विश्वेक विश्व भरण भर जिमी जहान के विक विश्व दीव घर जिमी जहान के विक सदीव करम परम अद्वेक है अभेक है अलेख नाद जानी है सदीव सर्वण और मैं विषय धान मानी है जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न पाड़ है न घाट बाड़ घाट है न पाड़ है घाट बाड़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानी है मकीन हो मकान रूप प्रमान तेज पानी हो मकान है प्रमान तेज पानी है न दे है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न नामत है न अंग है न रंग है न संग है न साध है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न राव है न साग है न संक है न जश है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र न रेख है न रूप है न जंत्र है न छिद्र

बेअंत है अनंत है अनंत तेज जानी है वो मवेद है सदा तेज तेज मानी है बिना धंधा व्यात है तेज का रूप देखी है तो है दा करुथे पताप देखी है पताप देखी है न कर्म है न भ्रम है न धर्म को प्रभाव है न जप रहम है तंत्र है को मंत्र लाव लाव है न चल है न चित्र है रूप लाव रूप चल है भंज है नंज है वो संज से कल भूत है काम है न क्रोध है न लोभ मोह है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग रंग रूप है न रूप रेख रंग न भाव है न भाव है न दाव को प्रकार है दाव को प्रकार है बजात भी न रात भी करंत से बजात भी न रात भी करंत से वनस्पति जब दस सदा जन्म जाको मंत्र मातन मित्र सर्व ठार रहे और बिखे रमयो जय चक्र चिहन न चित्र देव देव न जान ही जय परम वेद कतेव सनक ओ सन केस नंदन पाप जच किन्नर मछ मानस मुर्ग पुकार ही शिव सक्र ओ मुखचार सर्व सबत अवतार के आद देवा गाद तेज नाद मुरदा ताप जंत्र मंत्र नावे कर तंत्र मंत्र मकीन सर्व ठार रहे रो विराज धिराज राज प्रवीण जस गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे ब्रह्म से स्वरूप मध उर्धन जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म देव जागोर के न अधीन

जय जय हो सी मखा सुन मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंसे कारण करी ली गर्व कही ली जोत शुद्ध गति जय जय हो सी नाद मते काल कटे चंद्रानंद चारे नरक ने जय जय हो सी मखा सुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे चक्र दंतन वर्दन बिटाल बद्रे सरदार विफर कर दुर्जन धन खन तुले मखा कथे छंद तुम कहो अब करते पसार जद अभूत कृपाल अभूत अनभय दयाल दाता तुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच की नो बना सब वार को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे पूजा करंत कई सिद्ध साध सूर शिवंत कई पलट

छायो ध्यान से दर्शोत है को मन मैं जह को मितो जस वै जग छायो वेद पुराण का पजहारे वेद छेद राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे अध अनाथ अगाध अभे गत वेख जप्यो तिन ही कुल तीरथ कोट के स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष तबोधन केस धरे आसन कोट

रूप को निवास है कि बुद्ध को बुद्ध होकर खर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अर है, जान जाल विश्व को भरण है, गया पदा को हरण है, शोक को करण है, पार पार अवार हूं, हव सी हलब्बि धव पूर बिना पार पावया, सत्य नाश है, देवन को दिन अभेव नाधीन है, कटैया जिन जात के देवन के देव महादेव के देवनाद भूम के भुजैया है, मुह य महाबाल के महासाज हूं, के साजा महाजोग हूं, के जोग है, धरैया ध्रुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल छीर कैसे छीरा वो छाज के इंद्र के पारसी पलाऊगढ़ रूपा के श्रीरामपुर सूर असी सुरंगाबाद निगुड़ चांद दूसरी चंदागढ़ की रति हरी रही माल दिसी फूल के फटी पलाऊगढ़ कांसी पुर असी सुरंगाबाद निगुड़ चांद दूसरी चंदागढ़ की रति हरी रही माल दिसी फूल के फटी पलाऊगढ़ कांसी पुर असी सुरंगाबाद चंदनसी चंपावत चंद्रमा सी चंदा की चंदनसी चंदा गढ़ जो जोही चंदनसी कासम करंग द्वार पक्की सी बिरंदा वद बिरंदा ते हर की लुजी रे सो लगे दत हर की लुजी रे सो लगे पर से फिर की पर सी सी के तुरंग की मरत कर मान के मेरा स्थित रे की दंगा जी वदा हर भर तन री दंगा जी गोर रे खरी घर बचा दे कौन के ला हर कर की नाम जारी यत है के हर कर नाम जारी यत है पूरब बलाव काम रूप कमाओ सब ठावर मुकबिर को जहो कहां जाई यत है पूरन जहां पे जंत्र पंत्र ते आता बिना तकी तब जे हरि को ना पा पद हरि को ना पा।

प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मलै त्रिपतास, मल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, धृग जीवै धृग जीवास, जिन हर जिन सतगुर संगत पाई, तिन धर्म मस्तक लखया लखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जिन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मंचित वह उदम जा, आहिर हर जियो परिया, सैल पत्थर मह जंत उपाय, ताका रजक आगे कर धरिया, मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ, जन पिता लोक सुत बंता, कोय न किसकी धरिया, सिर सिर रजक संबाहे, ठाकुर काहे मन भाव करिया, ऊडे ऊड आवे सैको सा, तिस पाछे पछरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया,

देह अनत नानत रह जस नाउ चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताक त्वार बुहारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह

घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटो, जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुन हो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तत्गा।

हमें जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जलाए भाव में जब जला